पाइटर या गिराज से ढाई और रूपा से ढाई संपर्क फोन नंबर 0665207727 मोबाइल नंबर 9845424264 र 9847609015

0: 鬼。
1: 哦，爸爸来了，还没在我这边，在你家里边待一个，那喝一杯，别上来。
2: 来，俺们这三个到地门边。
1: 来。
3: 你有玩过蛋吗？
4: ये क्या पार्टी का होना दिखने का है होते ही
3: रात अभी बाकी था एक किसी बसी का ना कि कुरा जाने का होना।

0: अनि त्यसपछि के भयो त बाबा?
1: त्यसपछि के भयो फेरि पछि भनौला है बालक।
2: भोलि कैलाशपति शिव पार्वती की जय। भोलि बम्बई जाने।